राम ना जपहौ कवन भ्रम भूले, तुम ते काल ना दूरे, अनेक जतन कर एह तन रखहौ, रहै अवस्था पूरे, आपन किया कछु ना होवै, क्या को करै परानी, जात सभावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ मह बसते, फुलवत देह आयाने, कहो कबीर जेह राम ना चेत्यो, बूढ़े बहुत सियाने।

संग माए मारहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमरहो जन्म।

राम भगत बेसेख रहाओ। सुआन सत्वर अजात सब ते कृष्ण लावे हेत, लोग बपुरा क्या सरा है तीन लोक परवेश। अजामल पिंगुला लुबद कुंचर गए हर के पास, अजामल पिंगुला लुबत कुंचर।

रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच सबद बिन कभो ना छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जप हो रस रसना इन बिद तार तू तारी बहरे करन अकल पई होछी शबद सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मनमुख हारिया बिन गुर अंध ना सूझया रह उदास आस निरासा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी भैरव महला पहला भूंडी चाल चरण कर खिसरे।

फोन अदुले शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंदलो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस।

0: ताप पूजा देह दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुकत ना पावस मुकत नाम गुरमुख लह।
1: जिमें पाठ जगन किया गया है ना पहरा महला पहला जगन होम पुन ताप पूजा जगन ही करना है जजे दे पर अदक ला के पारा करके। हाँ जी
0: राम नाम बिन बिरथे जग जन्म बिख खावै बिख बोली बोलै बिन नावै नेह फल मर भ्रमणा रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणै संध्या कर्म ते काल करै बिन गुर शब्द मुकत कहा प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरै दंड कमंडल सिखा सूत धोती दंड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भ्रमण करै। राम नाम बिन शांत न आवै जप हर हर नाम सो पार परै। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन त्रिपत न आवै किरत कै बांधै भेख भया। जेते जीव जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया।

सतगुर प्रसाद जात का गर्भ न करियह कोई बहम बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चल है बहुत बेकारा रहाओ चारे वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई माटी एक सगल संसारा बहुबिद भांडे घड़े कुमारा बहुबिद भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिल देही का आकारा घट वध को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो करम बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरव महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोए जागत रह न मूसै कोय रहाओ सो जागै जिस सतगुर मिलै पंच दूत ओह वसगत करै सो जागै जो तत् बीचारै आप मरै अवरा नह मारै सो जागै जो एको जाणै।

दुर्लभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, राम नाम जन पल है सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का भाणा मन है से जन प्रवान, हर का भाणा मन है से जन प्रवान, गुर कै शब्द

एकाई मार मार जम है ठौर ना पाव है बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई।

बिन शब्द सुरत न आई। त्रै गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए। हर का नाम निदानो पाया, सुख वसिया मन।

इच्छह सोई फल पावह। गुर बाणी सुख पाए भैरो महला तीजा। दुख विच जम्मै दुख मरै।

दात्री तर्पण किछु न जाने सबदे मेल मिलाया रहाओ आन दिन भगत करहै दिन राती दुबिदा सबदे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वसया मन सोई मूर्ख दुबिदा पढ़ै।

मुख परी स्नान कियो आठ साठ सुरसरी हम मूरख कहो हर कृपा करी जन नानक तारियो।

0: पुले परम पुले नार करत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रहाओ।
1: ऐडा विच बोलिया जांदा ओ नहीं बोलना जन्म मरण ते रहत नारायण।

सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरो महला पंजवा वरतन

दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खाप गए कोरंगा जो जो दिस सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन करसियानो बासन रोग भवर बिनसानो हेत रोग का सगल संसार।

रोग बंद रहन रति ना पावै, बिन सतगुर रोग कतह ना जावै। रोग बंद रहन रति ना पावै, बिन सतगुर रोग कतह ना जावै। पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाह पकड़ रोगह काढ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, काहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरव महला पंजवा।

0: सो जापै जिस सत गुर पूरा हर कीर्तन हर कीर्तन ताको आधार कहो नानक जिस आप दयार।
1: इथे हुण आपां ब्रेक कर लैने आ 5 मिंट आप जी जल पानी वरत के फिर आ जायो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु।

सदा सखाई हर हर नाम, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कह जाम, रहाओ जब इहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते।

आठ पहर कीर्तन गुण गाओ धन हर भगत धन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरव महला पंजवा गुर सो प्रसन्न हो।

0: पार ब्रह्म गौर अगम अपार
1: पार ब्रह्म
0: पार ब्रह्म पार ब्रह्म गौर पार ब्रह्म गौर अगम अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोय नानक सब किछ प्रभ ते होय भैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्ब मनोरथ पूर्ण करणे आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक सो कुलवंता जे सिमरै सो अमी सो पतिवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन ध्याया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद मा

भेद ज्योत स्वरूप, ज्योत स्वरूप चा की सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आराधो, दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे बाण त्रिन त्रिभवन सार, जा कै सूत परोया संसार, आपे शिव सकती संजोगी, आपे निर्बाणी आप निर्बाणी आपे भोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी, जत कत पेखाओ तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग, मुकत भुगत जुगत वस जा कै, ऊणा नाही किछ जन ता कै, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन धन, भैरव महला पंजवा। भगता मन आनंद गोबिंद, भगता मन आनंद गोबिंद, आस्थित भय बिनसी सब चिंद, भय ब्रह्म बिनस

परमेश्वर रव रहया पूर्ण सब ठाए रहाव। धन माल जोबन जुगत गोपाल जीव प्राण नित सुख प्रतपाल अपने दास कौ दे राख हाथ निमख ना छोड़ सद ही साथ हार सा प्रीतम हार सा प्रीतम अवर न कोय सार संभाले साचा सोय मात पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन तिसकी धर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कै मन एहो पुरखारथ नानक कै मन एहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे सुवारथ भैरव महला पंजवा भै कौ पौ पढ़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाओ हर के लोक सदा गुण गाव है तिन कौ मिलिया पूर्ण धाम जन का दर्स बांछै दिन राती होए पुनीत धर्म राए जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत भेट है वडभागी नानक तिन कै सद कुरबान भैरव महला पंजवा पंच मजमी जो पंच न राखै मिथ्या रसना नित उठ भाखै चक्र बनाए करै पाखंड चक्र बनाए करै पाखंड चोर चोर पचै जैसे त्रे रंड हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुकत न पाईए साची दर्ग है साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने लीपे है थाए ना स्वच्छ

0: तन अंतर एक ध्याय गुर उपदेश दया संतोख नाम निधान निर्मल एहो थोक कर कृपा लीजै लड़ लाय चरण कमल नानक नित ध्याय भैरव महला पंजवा सत गुर अपने सुनी अरदास कार्ज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ध्याया मन तन अंतर प्रभु ध्याया
1: मन तन
0: मन तन अंतर प्रभु ध्याया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समर्थ गुरदेव सब सुख पाई।

0: पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूर्त गुर तिस का रूप जा के अंतर बसै हर नाम जो जो पेख सो ब्रह्म ज्ञान बीस बिसुए जा कै मन प्रगास तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास तिस गुर कौ सद करी नमस्कार तिस गुर कौ सद करी नमस्कार तिस गुर कौ सद जाओ बलिहार सत गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर नानक जप जप सद जीवा राग भैरव महला पंजवा पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद परतपाल प्रभ किरपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्ब को धनी रहाव अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललत अनेक तार मुनि अनेक नाद अनेक बाज निमख निमख अनेक स्वाद अनेक दोख अनेक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तट है खट है वर्त पूजा गबन भवन जातर करन सगल फल पुनि भैरव अष्टपदिया महला पहला घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काट हौ मारा नानक होमै रोग बुरे जह देखा तह एका बेदन आपे बख्सै शब्द धुरे रहाओ आपे परखे परखन हारै बहुर सूलाक ना हुई जिन कौ नदर पई गुर मेले प्रभ भाणा सच सोई पौन पानी बैसंतर रोगी रोगी धरत सभोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्ण सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हार पद चीन भय से मुकते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदिया खंड पताल से रोग भरे
1: नदिया सात थोड़ा जा उखरा करके बोलना
0: रोगी सात समुंद सा नदिया रोगी सात समुंद सा नदिया खंड पताल से रोग भरे हर के लोक से साच सुहेले सर्बी थाई नदर करे रोगी खाट दर्शन पेख धारी नाना हठी अनेका वेद कतेब करह कह बपुरे नह बूझ है एक एका मिठ रस खाए सो रोग भरीजै कांत मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछुताही तीर्थ भरमै रोग न छूटस पढ़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन आन दिन निर्मल जिन को कर्म निशान पया भैरव महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद तिन करतै एक चलत उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता करता आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हौ कबहू ना छोड़ाओ हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाटी पादे कह आया नाम बिना नह पढ़ो आचार नाम बिना नह पढ़ो आचार नाम बिना नह पढ़ो आचार मेरी पटिया लिख देह गोविंद मुरार पुत्र प्रहलाद स्यो कहया माए पर व्यर्थ न पढ़ो पर व्यर्थ न पढ़ो रही समझाए पर व्यर्थ न पढ़ो रही समझाए निर्भ

हमारा कहया ना सुने आपने कार्य सवारे सब नगरी में भगत दृढ़ाई दोष्ट सभा का केश दोष्ट सभा का केश ना वसाई संडै मरकै की पुकार सबे दैत रहे चख मार भगत जना की पत राखै सोई किते कह कहया क्या हुई किरत संजोगी दैत राज चलाया हार ना बूझै तिन आप भुलाया पुत्र प्रहलाद स्यो बादर चाया अंधा ना बूझै कार नेड़े आया प्रहलाद कोठे विच राख्या बार दिया ताला निरभौ बालक मूल ना डराई मेरे अंतर गुर गोपाला कीता होवै श्री की करै अनहोदा ना उतराया जो तुर लिखिया सो आए पहुता जन स्यो बाद रचाया पिता प्रहलाद स्यो गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दाता अंत सखाई जह देखा तह रह आसमाई थम ओ पाड़ हर आप दिखाया अहंकारी दैत मार पचाया भगता मन आनंद वजी वधाई अपने सेवक कौ दे वड़ियाई जम्मन मरना मोह।

पुरख बिधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा।

0: मोस मोस मनवा सहज समाना गंगा के सांग सलिता बिगरी सोस
1: लड़ी वार ते
2: रंगदार पुथियां वाले नोट कर दियो जी गंगा कै संग सलिता बिगरी के दी थां ते कै दुलावां दे नाल पाठ करना है बाकी सारी पुथियां विच ठीक है।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ ਸੋਕੋਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਵਤਾਈ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੈ ਜਾਈ ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਵਤਾਈ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੈ ਜਾਈ ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੋ ਪੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮਿਆਇਓ ਤੋ ਨਦਰ ਨਾਮ ਪਾਈ ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੀਅਰ ਤੀਰੈ ਨ ਮਾਨੋ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਜ ਕੁਰਬਾਨਾ ਰਹਾ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਚੀ ਤਨ ਕੰਤਾ ਧਨ ਸੁਤੀ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ ਪਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਦੇਸ ਦਿਸਨ ਧਰਮ ਹੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਗੇ ਪਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਕਰਹਿ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਸਿੰਘਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੈ ਸੁਆਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਪਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਪਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
1: सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तने चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरुदयाल है, पै दुख विनाशन है, पंगत वचल अनाथ नाथे शरण, नानक पुरक चुत है, कोर दोख्यन अनक हत्यन, जन्म दारिद्रन महाभिख्यादन, मिटंत सगल समरंत, हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट पस्मं क्रोत, सूरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौह गिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जम लज्जाए कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख बिधाता रहाओ, नानक प्रभ बिनासी, ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद करे तेरे दासा, जब पूरन होई आसा, बिलावल महला पंजवा, ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई, चौ गिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई, सदगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया, एक आलि उलाई रहाओ, राख लिए तन रखनहार, सब ब्यात मिटाई, कहो नानक कृपा पही, प्रभ पहे सहाई सलोक, जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह चुट है, निकट न जाई अहो दूत, सलोक महला पंजवा, मन मह चित वो चितवनी, उदम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओवंकार सदगुर प्रसाद, जय कर कीरत आख्य करते का हुई बिचारो, तितकर गावहु सोहिला, सिमरहु सृजनहारो, तुम गावहु मेरे निरपो का सोहिला, हो वारी जित सोहिला, सदा सुखोय रहाओ, नित नित जियड़े समालियन, देखे गा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कमन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहु सजन असीसड़िया, ज्यो होवे साहिब से उमेल, कर कर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय, नानक से देहे आवन, राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तुए रहाओ, विश्वे तस्या कन्या पहरा, थी वारी महो हुआ, सूरज को रुतन एक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मन अनुरो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत पीरी रहाओ, सहस्तम नयन नन नयन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोही, सहस्पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस्तव गंध इम चलत मोही, सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दय चानन सब मह चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत स पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लो बित मनो, अनिंद नो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नायवासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु पर्या, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजुली पुनवडा हे, कर दंडोत पुनवडा हे रहाओ, साकत हर रस साधना जान्या, तन अंतर हो मैं खंडा हे, ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है, जमकाल सह है सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वडवडा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औत कटे दिन सरण आरे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार विकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसहे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सुई बिहाज हो, हर गुरते मन है बसेरा, नित कर महल पावो सुख सहजे, बहुर

0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: कारखाने आवक जाता था सिर्फ गोव सिर्फ बनु पावे
2: पुले चोने आले कुछ सिद्ध सच्चा बाबा वाजुरी का कच्चा वाजुरी
1: कारक जावे ने आलू जावे तां तां चिकन गोपे सिंह से मनु पावे।

आदि जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियान पा लख होहे ता एक ना चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जीया हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता

निशान। गावै को गुण वडियाचार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार, आखह मंगह देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। था पिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविया गुणे निदान, गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर, पार्वती माई, जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा, विन भाने के नाए करी, जेति सिरठ उपाई, वेखा विन कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए, चंगा नावर खाए कै। जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई, ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे, तेहा कोई ना सुजई, जे तिस गुण कोए करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया ईसर बर्मा इंद, सुनिया मुख साला हनुमंद, सुनिया जोग जुगत तान भेद, सुनिया सासत सिमरित वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सत संतोख ज्ञान।

अठसठ का इसनान सुनया पढ़ पढ़ पावह मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावह राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मने की गात कही ना जाए जे को कह पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मुहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवहि न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह है दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करै विचार करते कह करना नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर किता भार धरती होर परै होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता किता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पुलित कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो
नानक हुक्मी आवहु जाहु तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाउ अंतरगत तीरथ मल नाउ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।

काम है, अतेय है, अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगंभ, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भौने, अनंगी अनाथ निरसंगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इसनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओघहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त तामं, तेरा जोर चाचरी छांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपी हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात छांद, अगाधे

नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विसव रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख

उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अभंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाढ़ अन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै प्रथीसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत

ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचार है सार की धार पछैया तोर तदेस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनेंदनी साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नराधप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुन्दरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाँ सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिछाह को सीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साहि दसवी कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा
तुम है छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बार चाहऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखे हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझजू करिया हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को साव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना है, घट घट के पट पट की जाना है, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनादि असंब, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा, ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव काउ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न है भेव, आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर एकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम, भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं, भव अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रान काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग केत मैं सरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्ब ठाउर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छाय करता, श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल, सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै,
चाव पई संबत सत्रह सहस पनिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस। गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस। गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया। शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यो मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा। क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संता हो शब्द धरहु प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी। लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया। आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै। पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या करह बेचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै। कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै। आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी। कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ। हुकम मन्यै पाईऐ हुकम मन्यहो गुरु केरा। गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया। चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया।
ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਨੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਨੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ ਜੀ, ਅਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ, ਏ ਆਖ ਹੈ ਤਾ ਵੇਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ, ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ, ਹਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵ ਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵ ਹੇ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਹੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ, ਜੀ ਆਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਆਹੋ ਤਾ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਨਹਿ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਜੀ ਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਆਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੇ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜੀ ਆਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ,
कहै नानक विचार देखा हो विन सतगुर मुक्त ना पाए आवहु सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहु सच्ची बाणी बाणी ता गावहु गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवहु अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारिग पाणी कहै नानक सदा गावहु एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछूना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवानी कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कै करता पे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सस्यो लिवलाए कहै नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पाप बिचार दे तत्तै सारना जानी गुरु बज हो तत्तै सारना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जान जागे जिना हार मन वस्या बोलह अमृत बाणी कहै नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हार लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिया मनहु क्यों विसारिया ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कहै नानक ए वडदाता सो क्यों मनहु विसारिया जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जम्या परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कहै नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै ते सुनो सिर सौपिया विच हो आप जाए।

आया, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी, सच अलख वेडानी, ताकि गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो, साचै सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्तर खाया, गुरद्वारे लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो, गावहुता सोहिला घर साचै, जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है, जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव हे, एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे, कह नानक सच सोहिला सचै घर गाव हे, आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वेसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गोर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे।

कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचार हो कोई, माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जीओ, नाम चक्कर ते सुन सकते हो। हिरदा चक्कर दिल दी धड़कन उत्थे सुन सकते हो। कंठ चक्कर जिथे गले चों आवाज आउंदी है उत्थे सुन सकते हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान लियाण दी कोशिश नहीं करनी जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच वी ध्यान रखना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा जे व्यास नहीं है उन्हां ने सास ग्रास अंतर्गत सिमरन च ध्यान रखना जीओ। श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ दो मिनट तक, फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ।

एको सच्चा सोए जित मुख सदा सराहे है भागा रती चार। नानक तित मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपने।

आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयालु एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र शरण विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सतसंग जी गुरफतेह प्रवान करो रल मिल के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियां दे पासों बड़े ही प्यार दे नाल अमृतमय कीर्तन सरवण कर रहे सी। कीर्तन नू कलयुग दे विच प्रधानगी बख्शिश कीती हुई है। बाणी दा फरमान है कलयुग में है कीर्तन प्रधाना।

वाजे पांच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। पांच दूत तुद वास कीते, काल कंटक तुर करम पाया, तुद जिन कौ से नाम हर के, कह नानक तह सुख हुआ।

राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप है आठौ नंदन। प्रथम राग पहरव वै कर ही, पंच राग नी संग उचर ही। प्रथम पैरवी बिलावली, पुनिया की गावह बंगली। पुनस लेखी की पही बारी, ए पहरव की पाचौ नारी। पंचम हरख दिस

मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौशक उबारा, खौ खट औ पौरा नद गाये, अष्ट माल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट।

नानक दास सदा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

जैसे जल सींच कै तमाल प्रत पालियत बोरत नकाश जवाला में नजार है लोस्त के जाड़ गाड़ बोहित बनाइयत लोस्त सागर अपार पार पार है प्रभ कै जानीज जन जन कै जानीज प्रभ तात जन को न गुण अवगन विचार है।

0: नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। सो इन्नी का हाजरी आप संगत प्रवान करो। अगले समय वास्ते बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई महताब सिंह जी जलंधर बारे जिन्हों आप बड़े प्यार अदर सत्कार दे नाल जिन्हों के शब्द सरवण करते हो। आओ हुण अगले समय वास्ते वो हाजरी भर रहे ने होइया भुला चुका रिखिमा बख्श करो बुलाओ जी फतेह सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी जामनी साहब वालों का रागी जत्था संगतों वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे आ बहुत ही सत्कारयोग सिख पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई साहब भाई महताब सिंह जी जलंधर वालों के रागी जत्थे नूं कि वह आप जी हुण शब्द कीर्तन सरवण करवाउण जी। आप जी शब्द कीर्तन सरवण करो जी ते गुरु साहब जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद होवा वड भागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया।

प्रभु मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर ले वलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादहाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी।

0: आओ एक शब्द दी हाजरी। भाई साहब होना ने एक शब्द दी हाजरी ला के फिर अपना समाप्ति करेंगे। दोनों परिवारों नूं दास दे जथे वालों लख लख वधाई। सतगुरु चढ़दी कला की दात आपस में परस परस प्यार दियां दातां बख्शिश करन। गजवा जी कबला फतेह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कि ना सामी तोला तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोला। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह साहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमक तुम ही प्रतपालो

लो हम बारिक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिया बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले।

देने अज खुशियां न चढ़िया गुरु जी दी टक्की ओट आस है कर दियो कर जानू रास दी चरना च एहो अरदास है कर दियो कर जानू रास दी चरना च एहो अरदास है।

0: सुनियो किस तरह जो वरते पाने, अगे सुनियो किस तरह जो वरते पाने, अगे सुनियो किस तरह जो वरते पाने।
1: हुण मेरे कहण दी तां बहुती लोड़ नहीं, नाल दे साथियां कह दिता अगे सुनियो किस तरह जो वरते भाणे। इस तों अगे हुण कल दे दीवान विच फिर चलांगे जी। होईआं बेंत भुल्लां दी खिमा कीर्तन दा तुसां सारे सत्कार कीता है। मायर दास कराई सतगुरु नामदान बख्शिश करन, चढ़दियां रखण हरमदान फतेह बख्शिश करन जी। बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तने सिंह यानी सुखविंदर सिंह जी पहुंच चुके हन। आओ उहनां कोल कीर्तन सरवण करो। ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया।

सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंत

भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी।

संगरो दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा।

ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन ना जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, रहाओ पंच बखादी एक गरीबा, राखो हो राखन हारे। खेद कर है अर बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। कर कर हारे ओ अनक बहु भाती, छोड़ है कतहू नाही। एक बार

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवां हमरी गणत ना गणिया काई अपना